0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: Sangeet.
3: रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
3: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब।
3: कल्चर ऑफ पंजाब
4: अंधेरों में गुम होकर बेशुमार कोशिशें करके सच्चाई तक खुद अपनी मेहनत से पहुंचना लाख दर्जे बेहतर है अपने आप को किसी ऐसे इंसान को सौंप देने से जो ये नहीं जानता कि वो कुछ नहीं जानता। नमस्कार, आदाब सामीन। इसी उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं, खुश हैं, सेहतयाब हैं, मैं प्रीत चाहूंगी इजाजत आज के शो का आगाज करने की जूलियन कार्टर की लिखी बात के साथ। अपनी किताब प्योरिफिकेशन प्रैक्टिस वाइस एंड होली अप्रोच टू होलनेस में उन्होंने लिखा है कि जब आप कामयाबी को पाने का मन बना लेते हैं तो आपके अंदर जितना भी प्यार है सब उस सफर में डाल दें, क्योंकि हर मुश्किल हर मुसीबत का एकमात्र सोल्यूशन है वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन एंड दैट इज लव। हाउ ट्रू। लव चाहे वो अपने काम के प्रति है, रिश्तों के प्रति है, इंसानियत के प्रति है, व्हाटसोएवर, एंड वो अनडाउटेडली सबसे अच्छा और बेहतरीन जवाब है हर सवाल का। मैंने बहुत से रिश्तों को बिखरने की कगार पर देखा है, पर जब जब मोहब्बत ने उनका हाथ थामा रिश्तों में फिर से जान आ गई। सिर्फ यही नहीं, ये सब जो अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, जो लेजेंड्स हैं अपने अपने फील्ड के, इन लोगों ने हर किसी से ज्यादा अपने काम के साथ मोहब्बत की है, इसीलिए ये जैसे और जहां हैं वहां हैं। ओके, टाइम टू मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की तारीख की। आज यानी 4th of July 1827 को स्लेवरी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था न्यूयॉर्क स्टेट में। 4th of July 1886 को पहली स्केड्यूल्ड ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन पहुंच गई थी पोर्ट मूडी ब्रिटिश कोलंबिया। 4th of July 1887 को पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया सिंध मदरसा तुल इस्लाम कराची में। इसके अलावा आज की तारीख को 1947 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के आगे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को प्रेजेंट किया गया था। प्रपोजल था इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंटू टू सॉवरन कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। साथ ही साथ आज बर्थ एनिवर्सरी है इंडियन रेवोल्यूशनरी अल्लूरी सीताराम राजू की। इसके अलावा आज जन्मदिन है द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के एडिटर अमोल राजन का। इन एडिशन टू ऑल दिस आज बर्थ एनिवर्सरी है इंडियन हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद चीफ डिसाइपल थे इंडियन मिस्टिक रामकृष्णा के और की फिगर थे इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है उनकी स्पीच के लिए जिसकी शुरुआत हुई थी विद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के साथ। ओके, साथ ही साथ आज डेथ एनिवर्सरी है पिंगली वेंकैया की, जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था।

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: रिसेंटली मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं ये आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं करते रोजमर्रा की जिंदगी में कि आपके आसपास क्या क्या नियामतें हैं। अब जैसे उस जर्नल में लिखा था कि अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, इनफैक्ट ये तीनों जरूरतें अगर आपकी पूरी हो रही हैं, तो आप 75% ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा अमीर हैं। अगर आज सुबह जब आप उठे तो आपके पास अच्छी सेहत थी, हेल्दी फील किया आपने, तो आप उन 1 मिलियन लोगों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो शायद 1 हफ्ते के बाद इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। अगर आप अपना सर उठाकर जीते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं और दिल से शुक्रगुजार हैं, तो यकीनन आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऐसा कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। और अगर आज ये सारी बात, ये सारा मैसेज जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप दुनिया के उन 2 बिलियन लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड हैं जो चाहकर भी कुछ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बिकॉज़ दे आर डेफ एंड ब्लाइंड। उम्मीद है अभी तक आप ये एहसास कर चुके होंगे कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: मैं नहीं जानती कि आपका रास्ता कौन सा है, मंजिल कहाँ है आपकी। मैं खुद को आपकी जगह पर रख भी नहीं सकती। मैं आपकी प्रॉब्लम को अपने नजरिए से सिर्फ देख सकती हूँ। मैं आपको जज भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये आस रखती हूँ कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, खूब तरक्की करें और इस बात को दिल से कबूल लें कि खुद को पहचान लें कि आप बेहद खूबसूरत हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। क्योंकि जिस दिन से हमने खुद को आईने में गौर से देखा, उस दिन से कोई अपने सिवा अच्छा नहीं लगता। वेल, फिलहाल एंजॉय करें एक अच्छा सा अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देव तातला।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

मैंने देखा है कि जब हम इंस्पिरेशनल लोगों की बात करते हैं तो जहन में एकदम से आ जाते हैं कई बड़े बड़े से नाम, उन लोगों के जिन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव किया। नेल्सन मंडेला, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज, शेक्सपियर जैसे राइटर्स और थिंकर्स, एडिसन जैसे साइंटिस्ट, हेलन केलर, मदर टेरेसा जैसे रियल लाइफ हीरोज और आइकॉन्स। पर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उन लोगों को जो हमारे आसपास अभी भी हैं, जिन्हें हम रोज मिलते हैं, वो लोग जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एक जंग लड़ते हैं, मुश्किलों का हौसले और हिम्मत से मुकाबला करते हैं, इनफैक्ट मुश्किलों से हार नहीं मानते, भागते नहीं उनसे दूर। ऐसे लोग हमारे बीच ही रहते हैं, हम में से ही कई हैं। आज का शो सलाम है उन हस्तियों को जो हमारे घरों में ही हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के रोल में, जिनसे हमें अभी बहुत कुछ सीखना है।

अच्छा, अगर नियत ना हो कोई काम करने की तो अक्सर वो काम मुश्किल इम्पॉसिबल सा ही लगता है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो, डिटर्मिंड माइंड और सोल हो तो फिर तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि राह तलब में जज्बा एक कामिल हो जिसके साथ खुद ढूंढती है उसको मंजिल, कभी कभी पाते हैं कुछ गुलाब पहाड़ों पे परवरिश, आती है पत्थरों में से भी खुशबू कभी कभी।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस कौ सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोभावै जे प्रसाद सुख से सुईजै मन आठ पहर ताका जस गावीजै जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जब

रखै जे प्रसाद करै पुन बहु दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर उसदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जसक है जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुर प्रसाद नानक मन जागौ जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभनेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हौ ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान उचै साधु कै संग मैल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेड़त हो तनिहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक पर हरै
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਕੜਕੜ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ।

दूर, साध की शोभा का नाहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा।

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुना नानक ज्यों पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक।

आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर।

कई कोट पर दर्ब कौ हेरै, कई कोट पर दुख ना करै। कई कोट माया श्रम माह है, कई कोट पर देश पर महा है। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त। कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच। सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगति लवलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास। कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहु

0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राजा महान सो नरक पाती होवत सवान, जो जन मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ करवंत कहावै, जन्म मरै बहजोन परमावै, धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटै अभमान, सो जन नानक दरगै परवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिरे अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगै कहो कैसे गवै। आपस कहो जो पला कहावै, तसै पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हों छूटै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सर्व सांझी गुरबाणी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन टॉप लिंक लोन एंड लीजिंग। तुहाडा ट्रक ट्रेलर दा लोन कितों नहीं हो रहा, जां तुसी यूज्ड ट्रक खरीदने हन ते सानू कॉल करो 204-480-9600, जां ऑनलाइन विजिट करो toplinkfinancial.com।

नचना सख्त मना है, नचना सख्त मना है, नचना सख्त मना है, नचना सख्त मना है। अगे खड़ के गबरू कुवारे दे, हंसना सख्त मना है, हंसना सख्त मना है, वो हंसना सख्त मना है, हंसना सख्त मना है। अगे खड़ के गबरू कुवारे दे।

0: कोई सोना कोई चांदी कोई पुत्र परी परात कोई सोना कोई चांदी कोई पुत्र परी परात नी पर तीनों कली करा दूंगा तू नची दिन ते रात नी पर तीनों कली करा दूंगा तू नची दिन ते रात नी।
1: टिकटॉक वालों सारे नू रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ जिवें परविंदर सिंह जी ने सानू फॉलो किया हुणे हुणे और मैं सारे नू बेनती करा तुसी बहुत सारा प्यार भेजदे हो। मैं 10,000 की गल करता सी दिल तुसी 11,000 भी पा देना गा तो साढ़े अकाउंट नू प्लीज़ फॉलो कर लो। सोमवार तो लैके शुक्रवार तक असी हुण हर रोज़ तुहाडे नाल 1 बजे तो लैके 3 बजे तक टिकटॉक के राही भी सांझ पाउने आ और तुसी दूर विनीपैग तो बाहर तो भी साढ़े नाल जुड़दे हो। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद आ। और अमन सिंह जी सत श्री अकाल, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। और रील गाना कहिंदे आरनेट दा लाओ और काला सप रंगा सूट। मनविंदर सिद्धू जी सत श्री अकाल, बहुत मेहरबानी, थैंक यू तुहाडा प्रोग्राम दे नाल जुड़न दे लई। एक कॉल लैने आ जी, कॉलर जी तुसीं आउंदे रहो।
2: हरिया
1: बागा दे काले जामना
2: बहुत वधिया गीत है वीरे।
1: चलो मान लेने थोड़ी एक लाने फिर, ठीक घर आ जा शाम नूं। हांजी
2: हांजी,
1: चलो 2 मिंट लाने। म्यूजिक तो ठीक है।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.